एफएम अध्यात्म ज्योति को प्रस्तुति कार्यक्रम भजन सुमिरन। प्रत्येक शनिश्चरबार बिहान 7 बजे देखि 8 बजे सम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। अध्यात्म ज्योति को यो प्रस्तुति का प्रायोजक शुद्धता को सुनौलो परंपरा जय माता दी गोल पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड। प्रत्येक आइतबार बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म यहाँहरुको शुभ सन्देश शुभेच्छा र प्रेरक प्रसंगका साथमा कार्यक्रम शुभ प्रभात सुन्न सक्नुहुनेछ मात्र एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। कार्यक्रम भजन दीपाञ्जलि प्रत्येक सोमबार सुमधुर भजन का साथ में बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। यस कार्यक्रम का प्रायोजक उच्च स्तरीय प्रविधि द्वारा स्वदेशमै निर्मित चाँदी का हर एक प्रकार का सामग्री का लागि प्रसिद्ध सिल्वर स्टेट धर्मपथ न्यू रोड काठमाडौँ। कार्यक्रम भजनांजलि प्रत्येक मंगलबार बिहान 7 बजे देखि 8 बजे सम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा।

देश लोकप्रिय प्रसारण संस्था एफएम अध्यात्म ज्योति मार्फत व्यवसाय वस्तु एवं सेवाको विज्ञापन गर्न इच्छुक महानुभाव सम्पर्क हेतु टेलिफोन नम्बर 98 41 2 8 9 8 2 0 98 41 2 8 9 8 2 0।

0: झीले यहाँ सुंदर यूनुंचा एफएम पचास जोटी जोटी
1: अध्यात्म ज्योति।

palabras. कल प्रवचन सुनते समय ऐसा लगा कि मैं इस पृथ्वी पर नहीं, वरन मुक्त और असीम आकाश में एक ज्योति कण। प्रवचन के बाद भी हल्केपन का, खालीपन का अनुभव होता रहा, उसी आकाश में भ्रमण करते रहने का जी होता रहा। ज्ञान कर्म भक्ति मैं नहीं जानता, लेकिन अकेला होने पर इस स्थिति में डूबे रहने का जी होता है। लेकिन कभी कभी यह भाव भी उठता है कि कहीं यह मेरा पागलपन तो नहीं, कहीं यह मेरे अहंकार का ही दूसरा खेल तो नहीं। कृपा पूर्वक मेरा मार्गदर्शन करें। इस पृथ्वी पर हम हैं, पर इस पृथ्वी पर वस्तुतः हम न हो सकते हैं और न हम हैं। प्रतीत होता है पृथ्वी पर हम अजनबी हैं। देह में घर किया है, लेकिन देह हमारा घर नहीं। जैसे कोई परदेश में बस जाए और भूल ही जाए स्वदेश को, फिर अचानक राह पर किसी दिन बाजार में कोई मिल जाए जो घर की याद दिला दे, जो अपनी भाषा में बोले, तो एक क्षण को परदेश मिट जाएगा, स्वदेश प्रकट हो जाएगा। शास्त्र का यही मूल्य है, शास्त्राओं के वचनों का यही अर्थ है। उनकी सुन के क्षण भर को हम यहां नहीं रह जाते, वहां हो जाते हैं जहां हमें होना चाहिए। उनके संगीत में बहकर जो चारों तरफ घेरे है वो दूर हो जाता है, और जो बहुत दूर है पास आ जाता है।

चैन को उपलब्ध न हो सकेंगे। जहां हम हैं सराय है, घर नहीं। कितना ही मान के बैठ जाएं कि घर है, फिर भी सराय सराय बनी रहती। समझा लें, बुझा लें, भुला लें, भेद नहीं पड़ता। कांटा चुभता ही रहता, याद आती ही रहती। और कभी जब ऐसे किसी सत्य के साथ मुलाकात हो जाए जो खींच ले, जो चुंबक की तरह किसी और दूसरी दुनिया का दर्शन करा दे, तो लगेगा कि हम पृथ्वी के हिस्से नहीं रहे। ठीक लगा कल प्रवचन सुनते समय, ऐसा लगा कि मैं इस पृथ्वी पर नहीं हूं। इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं, इस पृथ्वी पर हम मालूम होते। प्रतीति होती है, सत्यता हम आकाश में। हमारा स्वभाव आकाश का है। आत्मा यानी भीतर का आकाश, शरीर यानी पृथ्वी। शरीर बना है पृथ्वी से, तुम बने हो आकाश से। तुम्हारे भीतर दोनों का मिलन हुआ है। तुम क्षितिज हो जहां पृथ्वी आकाश से मिलती हुई मालूम पड़ती, लेकिन मिलती थोड़ी कभी। दूर क्षितिज मालूम पड़ता है, मिल रहा आकाश पृथ्वी से। चल पड़ो, लगता है ऐसे घड़ी दो घड़ी में पहुंच जाएंगे। चलते रहो जन्मों जन्मों तक, कभी भी उस जगह न पहुंचोगे जहां आकाश पृथ्वी से मिलता। बस मालूम होता, सदा मालूम होता, मिल रहा थोड़ी दूर आगे, बस थोड़ी दूर आगे। क्षितिज कहीं है नहीं, सिर्फ दिखाई पड़ता। जैसे बाहर क्षितिज है, वैसे ही हमारी अवस्था है। यहां भीतर भी मिलन कभी हुआ नहीं। आत्मा कैसे मिले शरीर से? मर्त्य का अमृत से मिलन कैसे हो? दूध पानी में मिल जाता है, दोनों पृथ्वी के। आत्मा शरीर से कैसे मिले? दोनों का गुणधर्म भिन्न है। कितने ही पास हो, मिलन असंभव है। सनातन से पास हो तो भी मिलन असंभव है। मिलन हो नहीं सकता, सिर्फ हमारी प्रतीति है, हमारी धारणा है। क्षितिज हमारी धारणा है, हमने मान रखा है, इसलिए है। अष्टावक्र के वचनों को अगर जाने दोगे हृदय के भीतर तीर की तरह, तो वे तुम्हें याद को जगाएंगे, तुम्हारी भूली बिसरी स्मृति को उठाएंगे। क्षण भर को आकाश जैसे खुल जाएगा, बादल कट जाएंगे, सूरज की किरणों से भर जाएगा प्राण। कठिनाई होगी, क्योंकि हमारे सारे जीवन के विपरीत होगा ये अनुभव, इससे बेचैनी होगी। और ये जो घटाएं छट गई हैं, ये तुम्हारे कारण नहीं छटी, ये तो किसी शास्त्रा के वचनों का परिणाम है। फिर घटाएं गिर जाएंगी, तुम घर पहुंचते पहुंचते फिर घटाओं को घेर लोगे। तुम अपनी आदत से इतनी जल्दी बाज थोड़ी आओगे। फिर घटाएं गिर जाएंगी, तब और बेचैनी होगी कि जो दिखाई पड़ा था वो सपना तो नहीं था, जो दिखाई पड़ा था कहीं कल्पना तो नहीं थी, कहीं अहंकार का मन का खेल तो न था, कहीं ऐसा तो न हुआ कि हम किसी पागलपन में पड़ गए थे। स्वभावतः तुम्हारी आत्मों का वजन बहुत पुराना है, अंधेरा बड़ा प्राचीन है। यद्यपि है नहीं, पर है बहुत प्राचीन। सूरज की किरण कभी फूटती है तो बड़ी नई है, अत्यंत नई है, सद्ध स्नात। क्षण भर को दिखाई पड़ती है, फिर तुम अपने अंधेरे में खो जाते हो। तुम्हारे अंधेरे का बड़ा लंबा इतिहास है। जब तुम दोनों को तोलोगे तो शक किरण पे पैदा होगा, अंधेरे पे पैदा नहीं होगा। होना चाहिए अंधेरे पर, होता है किरण पर, क्योंकि किरण है नई और अंधेरा है पुराना। अंधेरा है परंपरा जैसा, सदियों सदियों की धारा है। किरण है अभी अभी फूटी, ताजी नई, इतनी नई कि भरोसा कैसे करें। लगा कि मैं इस पृथ्वी पर नहीं हूं, इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है।

0: इस पृथ्वी पर हम हो नहीं सकते, मान्यता है हमारी, धारणा है हमारी, लगता है, सत्य नहीं है। और मुझे असीम आकाश में एक ज्योति कण हूं ऐसा प्रतीत हुआ, ये शुरुआत है। असीम आकाश में एक ज्योति कण हूं, जल्दी ही लगेगा कि असीम आकाश हूं, ये प्रारंभ है। तो असीम आकाश में भी अभी हम पूरी तरह लीन नहीं हो पाते। अगर लगता भी है कभी कभी वो उड़ान भी आ जाती, वो तूफान भी आ जाता, हवाएं हमें ले भी जाती, तो भी हम अपने को अलग ही बचा लेते। ज्योति कण न रहे अंधेरे, हो गए ज्योति कण, लेकिन आकाश से अभी भी भेद रहा, फर्क रहा, फासला रहा। घटना तो पूरी उस दिन घटेगी जिस दिन तुम आकाशी हो जाओगे। ज्योति कण भी भिन्न है जिस दिन तुम अभिन्न हो जाओगे, जिस दिन लगेगा मैं शून्य आकाश। ऐसा तो कहते हैं भाषा में कि मैं शून्य आकाश हूं, जब तक मैं है तब तक ये कैसे हो सकेगा। मैं है तो आकाश अलग रहेगा। जब ऐसा प्रतीत होगा कि शून्य आकाश है तब मैं तो नहीं रहूंगा, शून्य आकाश ही रहेगा। कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, लेकिन जब ब्रह्म होगा तब मैं कैसे रहेगा। ब्रह्म ही रहेगा, मैं नहीं रहूंगा, पर कहने में और कोई उपाय नहीं। भाषा तो सोए हुए लोगों की, भाषा तो उनकी है जो परदेश में बस गए और जिन्होंने परदेश को स्वदेश मान लिया। मौन ही ज्ञानियों का है, भाषा तो अज्ञानियों की। तो जैसे ही कुछ कहो, कहते ही सत्य असत्य हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं आकाश हूं, कहते ही असत्य हो गया, आकाश ही है। लेकिन यह भी कहना आकाश ही है पूरा सत्य नहीं है, क्योंकि ही बताता है कि कुछ और भी होगा, अन्यथा ही पर जोर क्यों है। आकाश है, इतने कहने में भी अड़चन है, क्योंकि जो है वो नहीं हो सकता है। हम कहते हैं मकान है, कभी मकान नहीं हो जाता है, गिर जाता है, खंडर हो जाता है। हम कहते हैं आदमी है, कभी आदमी मर जाता है। आकाश इस तरह तो नहीं है, कभी हो है और कभी नहीं, आकाश तो सदा है। तो आकाश है ऐसा कहना पुनरुक्ति है, आकाश का स्वभाव ही होना है, इसलिए है को क्या दोहराना। है कहना तो उन चीजों के लिए ठीक है जो कभी नहीं भी हो जाती। मनुष्य है, एक दिन नहीं था, आज है, कल फिर नहीं हो जाएगा। हमारी है तो दो नहीं के बीच में, आकाश की है, कल भी है, आज भी है, कल भी है, दो है के बीच में है का क्या अर्थ। दो नहीं के बीच में है का अर्थ होता है आकाश है, ये भी पुनरुक्ति है। कहें आकाश, लेकिन आकाश जब कहते हैं, शब्द जब बनाते हैं, तभी भूल हो जाती। आकाश कहने का अर्थ हुआ कि कुछ और भी होगा जो आकाश से अन्यथा है, भिन्न है। अन्यथा शब्द की क्या जरूरत, अगर एक ही है तो एक कहने का भी कोई प्रयोजन नहीं। एक तो तभी सार्थक है जब दो हो, तीन हो, चार हो, संख्या हो, आकाश भी क्या कहना। इसलिए ज्ञान तो मौन है, परम ज्ञान को शब्दों तक लाना असंभव है। लेकिन हम धन्यभागी हैं कि अष्टावक्र जैसे किन्हीं पुरुषों ने अथक असंभव चेष्टा किए, जहां तक संभव हो सकता था सत्य की सुगंध को शब्द तक लाने का प्रयास किया है। और इतना ख्याल रखना कि अष्टावक्र जैसी सफल चेतना बहुत कम है, बहुतों ने प्रयास किया है सत्य को शब्द तक लाने का, सभी हारे, हारना सुनिश्चित है। मगर अगर हारे हुए में भी देखना हो तो अष्टावक्र सबसे कम हारे, सबसे ज्यादा जीते हैं। तो सुनोगे ठीक से तो घर की याद आएगी। सुबह की लगा ज्योति कानू, तैयारी रखना खोने की, किसी दिन लगेगा ज्योति कण भी खो गया, आकाश ही बचा, तब पूरा मतवालापन छाएगा, तब डूबोगे सत्य की शराब में, तब नाचोगे, तब अमृत की पूरी झलक मिली। प्रवचन के बाद भी हल्केपन खालीपन का अनुभव होता रहा, उसी आकाश में भ्रमण करने का जी होता रहा, यहां थोड़ी भूल हो जाती। जब भी हमें कुछ सुखद अनुभव होता है तो हम चाहते हैं फिर हो। मनुष्य का मन है बड़ा कमजोर, आकांक्षा से भर जाता, लोभ से भर जाता, प्रलोभन पैदा होता, जो भी सुखद है उसे दोहराने का मन होता। लेकिन एक बात ख्याल रखना, दोहराने में ही भूल हो जाती। जैसे ही तुमने चाहा फिर से हो कभी ना होगा, क्योंकि जब पहली दफा हुआ था तो तुम्हारे चाहने से ना हुआ था, हो गया था, घटा था, तुम्हारा कृत्य ना था। यही तो अष्टावक्र का पूरा जोर है, सत्य घटता है, कृत्य नहीं घटना है। सुनते सुनते हुआ था, तुम कर क्या रहे थे? सुनने का अर्थ ही होता है कि तुम कुछ भी ना कर रहे थे, तुम शून्य भाव से बैठे थे, तुम मौन थे, तुम सजग थे, तुम जागे हुए थे, सोए नहीं थे, ठीक। लेकिन तुम कर क्या रहे थे? तुम केवल ग्राहक थे। तुम्हारी चित्त की दशा दर्पण की तरह थी, जो आ जाए झलक जाए, जो कहा जाए सुन लिया जाए, तुम कुछ उसमें जोड़ ना रहे थे। अगर तुम जोड़ रहे होते तो जो घटी है बात वो कभी ना घटती। तुम व्याख्या भी ना कर रहे थे, भीतर बैठे बैठे तुम ये ना कह रहे थे कि हाँ ठीक है, गलत है, मुझसे मेल खाता नहीं मेल खाता, शास्त्र में ऐसा कहा है कि नहीं कहा है। तुम तर्क ना कर रहे थे। अगर तुम तर्क कर रहे थे तो ये घटना ना घटती। जिनने पूछा है स्वामी ओम प्रकाश सरस्वती ने, उन्हें मैं जानता हूं, तर्क से उनका चित्त बड़ा दूर है, संदेह विवाद से बहुत दूर है, जा चुके वे दिन। कभी किया होगा तर्क, कभी किया होगा संदेह, जीवन के अनुभव से पक गए, अब नहीं, वो बचपना मन में रहा, इसलिए घटना घट सकी। सुन रहे थे, कुछ करना रहे थे, बैठे थे, बैठे बैठे हो गया। तो जब पहली दफा तुम्हारे बिना किए हुआ तो दूसरी दफा अगर तुमने चाहा कि हो जाए तो बाधा पड़ जाएगी। चाह तो उसके होने का कारण थी ही नहीं, इसलिए जब ऐसी अभूतपूर्व घटनाएं घटे तो चाहना मत। जब घटे आनंद भाव से स्वीकार कर लेना, जब न घटे तो शिकायत मत करना, मांगना मत, मांगे कि चूके, मांगने जबरदस्ती, आग्रह घटना चाहिए। एक दफा घट गया तो अब क्यों नहीं घटता है? ऐसा रोज होता है। जब यहां लोग ध्यान करने आते हैं, शुरू शुरू में ताजे और नए होते, कोई अनुभव नहीं होता तो घट जाता है। ये बड़ी हैरानी की बात है, इसे तुम समझना। अष्टावक्र को समझने में इससे सहायता मिलेगी। ये मेरे रोज का अनुभव है, जब लोग नए ताजे आते और ध्यान का उन्हें कोई अनुभव नहीं होता तो घट जाता है। घट जाता तो आह्लाद से भर जाते, मगर वहीं गड़बड़ हो जाती, फिर मांग शुरू होती, आज जो हुआ कल हो, न केवल हो बल्कि और ज्यादा हो, फिर नहीं घटता। फिर वो मेरे पास आते रोते, वो कहते हुआ क्या, कहां भूल हो गई, पहले घटा अब नहीं घट रहा है। भूल यही हो गई कि पहले जब घटा तो तुमने मांगा ना था, अब तुम मांग रहे हो, अब तुम्हारा मन निर्दोष ना रहा, मांगने दूषित किया, अब तुम सरल ना रहे, अब तुम खुले ना रहे, मांगने द्वार दरवाजे बंद किए, आकांक्षा जग गई, आकांक्षा ने सब विकृत कर दिया, वासना खड़ी हो गई, लोभ पैदा हो गया। ऐसा रोज होता है। जो लोग बहुत दिन से ध्यान कर रहे हैं, बहुत तरह की प्रक्रियाएं कर रहे हैं, उन्हें ध्यान बड़ी मुश्किल से लगता है, उनका अनुभव बाधा बनता है। कभी कभी कोई चला आता है ऐसे ही तरंगों में बहता हुआ, कोई मित्र आता था, उसने कभी सोचा भी नहीं ध्यान का। कोई मित्र आता था, उसने सोचा चलो चले चले देखें क्या है, कुतूहल बस चला आया था। कोई वासना न थी, कोई अध्यात्म की खोज भी न थी, कोई चेष्टा भी न थी, ऐसे ही चला आया था। औरों को ध्यान करते देख तरंग आ गई, सम्मिलित हो गया, घट गए, चौंका आदमी, मैं तो आया ही नहीं था ध्यान करने और ध्यान हो गए। बस फिर अड़चन, अब दोबारा जब आता है तो आकांक्षा है, मन में रस से फिर से हो, लोभ है, पुनरुक्ति का भाव है, मन आ गया, मन ने सब खेल खराब कर दिए। जहां मन नहीं है वहां घटता है। ध्यान रखना मन पुनरुक्ति की वासना है, जो हुआ सुखद फिर से हो, जो हुआ दुखद फिर कभी ना हो, यही तो मन है। मन चुनाव करता है, ये हो और ये ना हो, ऐसा बार बार हो और ऐसा अब कभी ना हो, यही तो मन है। जब तुम जीवन के साथ बहने लगते, जो हो ठीक, जो ना हो ठीक, दुख आए तो स्वीकार, दुख आए तो विरोध नहीं, सुख आए तो स्वीकार, सुख आए तो उन्माद नहीं। जब सुख और दुख में कोई सम होने लगता है, समता आने लगती है, जब सुख और दुख धीरे धीरे एक ही जैसे मालूम होने लगते हैं, क्योंकि कोई चुनाव ना रहा, अपने हाथ की कोई बात ना रही, जो होता है होता है, हम देखते रहते हैं, इसको अष्टावक्र कहते हैं साक्षी भाव। और वो कहते हैं साक्षी भाव सदा तो सब सदा, साक्षी भाव साक्षी को जगाता, भीतर बाहर समता ले आता है। समत्व साक्षी भाव की छाया है। या तुम समत्व में उपलब्ध हो जाओ तो साक्षी भाव चला आता, वे दोनों साथ साथ चलते, वे एक ही घटना के दो पैर या दो पंख, उसी आकाश में भ्रमण करने का जी होता रहता है। इससे सावधान होना, मन को मौका मत देना कि ध्यान की घड़ियों को खराब करे। इसी मन ने तो संसार खराब किया, इसी ने तो जीवन के सारे संबंध विकृत किए, इसी मन ने तो सारे जीवन को रेगिस्तान जैसा रूखा कर दिया। जहां बहुत फूल खिल सकते थे वहां सिर्फ कांटे हाथ में रह गए। अब इस मन को अंतर यात्रा पर साथ मत लाओ, इसे नमस्कार करो, इसे विदा दो, प्रेम से सही पर इसे विदा दो। इससे कहो बहुत हो गया, अब हम न मांगेंगे, अब जो होगा हम जागेंगे, हम देखेंगे। जैसे ही तुमने मांगा फिर तुम साक्षी नहीं रह सकते, तुम भोक्ता हो गए, ध्यान के भी भोक्ता हो गए, तो ध्यान गया। भोक्ता का अर्थ यह है कि तुमने कहा इसमें मुझे रस आया, इससे मुझे सुख मिला, ज्ञान कर्म भक्ति में नहीं जानता, लेकिन अकेला होने पर इसी स्थिति में डूबे रहने का जी होता है। छोड़ो इस जी को और तुम डूबोगे इसी स्थिति में। अकेले ही नहीं, भीड़ में भी रहोगे तो डूबोगे, बाजार में भी रहोगे तो भी डूबोगे। ये स्थिति का कोई संबंध अकेले और भीड़ से नहीं, मंदिर और बाजार से नहीं, एकांत समूह से नहीं। इस स्थिति का संबंध तुम्हारे चित्त के शांत होने से, सम होने से। जहां भी शांति समता होगी ये घटना घटेगी, लेकिन तुम इसको मांगो मत, अन्यथा यही अशांति बन जाएगी, यही तनाव बन जाएगी। अष्टावक्र कहते अभी और यही। मांग तो सदा कल के लिए होती, मांग तो अभी और यही नहीं हो सकती। मांग का स्वभाव वर्तमान में नहीं ठहरता। मांग का अर्थ ही है हो, कल हो, घड़ी भर बाद हो, क्षण भर बाद हो, हो। मांग अभी तो नहीं हो सकती, मांग के लिए तो समय चाहिए, थोड़ा ही सही पर समय चाहिए। और भविष्य है नहीं, जो नहीं है उसी का नाम भविष्य, जो है उसका नाम वर्तमान है। वर्तमान और मांग का कोई संबंध नहीं होता। जब तुम वर्तमान में होगे तो पाओगे कोई मांग नहीं, और तब घटेगी ये घटना। जब इसे घटाने का जीना रहेगा तब ये खूब घटेगी। इस पहेली को ठीक से समझ लो, इस पहेली का एक एक कोना पहचान लो। जिस दिन तुम कुछ भी ना मांगोगे उस दिन सब घटेगा। जिस दिन तुम परमात्मा के पीछे दीवाने होकर ना दौड़ोगे वो तुम्हारे पीछे चला आएगा। जिस दिन तुम ध्यान के लिए आतुरता ना दिखाओगे, तुम्हारे भीतर कोई तनाव ना होगा, उस दिन ध्यान ही ध्यान से भर जाओगे। ध्यान कहीं बाहर से थोड़ी आता। जब तुम तनाव में नहीं हो तो जो तुम्हारे भीतर शेष रह जाता उसका नाम ध्यान है। जब तुम्हारे भीतर वासना नहीं है तो जो शेष रह जाता उसका नाम ध्यान है। झील है, तरंगे उठ रही, हवा के झकोरे हैं, झील का पूरी छाती तूफान से भर गई, आंधी है, सब उथल पुथल हो रही है। आकाश में चांद है पूरा, लेकिन प्रतिबिंब नहीं बनता क्योंकि झील कप रही। दर्पण कैसे बने? चांद का प्रतिबिंब बनता है, टूट टूट जाता हजार हजार टुकड़ों में, चांदी फैल जाती पूरी झील पर, लेकिन चांद का प्रतिबिंब नहीं बनता है। झील शांत हो गई, लहरें कहीं चली गई, लहरें कहीं से आई थी, लहरें झील की थी, फिर सो गई, झील में वापस उतर गई, झील अपनी स्थिर अवस्था में आ गई। वो जो चांदी की तरह फैल गया चांद था, झील की छाती पर सिकुड़ाया, एक जगह ठीक प्रतिबिंब बनने लगा। जैसे ही तुम्हारे मन की झील तक तरंग नहीं होती, तरंग यानी वासना, तरंग यानी मांग, तरंग यानी ऐसा हो और ऐसा ना हो, जब कोई तरंग मन की झील पे नहीं होती तो सत्य जैसा है वैसा ही प्रतिबिंबित होता है। तो जो बनता है चांद तुम्हारे भीतर, उसके सौंदर्य का क्या कहना, उसके रस का क्या कहना, रसधार।
1: अवस्था आदरणीय श्रोता, आज को यो प्रवचन श्रृंखला यति नै। यसको बाँकी अंश आगामी कार्यक्रममा सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको यो कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।

0: Presents Weekend Classic Radio Show.
1: ना पहले कभी उठे वो जज्बात आज बरस रहे हैं, स्याही से रंगे हम कोरे कागज को तरस रहे हैं। पहले पहचान न थी तो गम था, आज इस पहचान का गम है। एक मौके की तलाश में गुमनामी को तरस रहे हैं। एक ठंडी सी आग लगी है मन में, जलाती है धीरे धीरे। एक ठंडी सी आग लगी है मन में, जलाती है धीरे धीरे। थोड़े से हम बचे हैं ऐ खुदा, तेरे पानी को तरस रहे हैं। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो के आज के इस एपिसोड में वंस अगेन वेलकम, मैं हूं रुचि आपके साथ। आज हम बात करने वाले हैं उस अदाकारा के बारे में जो जब जब सिल्वर स्क्रीन पर आती थी तब तब आग लगा देती थी। ना सिर्फ इनके गाने सुनना अच्छा लगता था बल्कि इनके गानों पर नाचना भी सभी को बहुत अच्छा लगता था। इनफैक्ट आई एम श्योर कि आज भी आप सारे गाने सुनकर के नाचेंगे ना सही तो आपके पैर तो थिरक ही जाएंगे। मैं बात कर रही हूँ द वेरी ब्यूटिफुल द वेरी सेक्सी हेलेन जी के बारे में। अपने ज़माने में इन्हें सेक्स सिंबल कहा जाता था, लेकिन क्या आपको पता है इंडस्ट्री में शी वॉज नॉट जस्ट फेमस एंड लव्ड बाय द प्रोड्यूसर्स फॉर हर डांसिंग, एक और टैलेंट था इनमें। क्या था वो बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले ओ हसीना जुल्फों वाली, रफी साहब और आशा जी की आवाज में तीसरी मंजिल से ये गाना। ओ हसीना।

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपत न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मीडिया शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: वो मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: वो
5: अनि मलाई

0: रसावेल छुच्चे पाटी
1: कोइले अय्या एकातिर कोइले अर्कोतिर दुखाइले जिन्दगीमा जहिले पनि पिर
2: दुखाइ सहेर बस्नु पर्ने दिन अब गए। घुडाको समस्या होस् वा कम्मरको पीडा, फ्रोजन शोल्डर होस् वा साइटिका, सबैको समाधान हो अर्थोबुस्ट। गन्धपुरा, बोस्वेलिया, नीलगिरी, अदुवा, कपुर र 15 भन्दा बढी आयुर्वेदिक तत्त्वले बनेको अर्थोबुस्टले ल्याउँछ छिटो राहत, त्यो पनि बिना साइड इफेक्ट।
1: अय्या भन्ने दिन गए आराम छ अहिले, अर्थोबुस्ट रोजिकन राम्रो गरे मैले।
2: अर्थोबुस्ट प्राकृतिक उपचार, छिटो राहत, दुखाइको अन्त्य, आनन्दको सुरुवात। अर्थोबुस्ट नजिकको फार्मेसी वा आयुर्वेदिक स्टोरमा उपलब्ध हुन्छ।
3: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो,
4: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
3: त्यसैले
5: शुद्धता नै खोजौ। जेजे ज्वेलर्स
6: प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन, चाँदी तथा हिराका आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्सन। सुन, चाँदी तथा हिरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्।
7: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क मुनि।
8: सम्पर्क नम्बर 5320411 9802076888।
6: जेजे ज्वेलर्स शुद्धताको पहिचान।
9: पिक्सी ब्रान्डको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उत्पादनहरू,
10: उच्च स्तरीय 100% सुतीबाट निर्मित पसिना सोच्ने हलुका टिकाउ र मुलायम इनरवेयर।
9: जेन्ट्सको लागि पिक्सी सुपर कुल भेस्ट ब्रिफ्स र पिक्सी गिलेक्स भेस्ट, लेडिजको लागि पिक्सी फेमिनेक्स क्यामिसोल र ब्लोमर।
11: पिक्सी फर द कम्फर्टेबल यु।
12: You are listening to Weekend Classic Radio Show.
13: Weekend Classic Radio Show सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वो हम सबको इशारों पर नचाया करती थी। मैं बात कर रही हूँ हेलेन खान की। आपको पता है हेलेन जी को डांसिंग का शौक तो था ही, लेकिन उसी के साथ हेलेन जी को शौक था हॉलीवुड मूवीज देखने का और उनके जैसे कपड़े पहनने का। जिस तरह के कॉस्ट्यूम्स हेलेन जी अपने गानों में पहनती थी वो सारे के सारे खुद हेलेन जी ही डिजाइन किया करती थी, चाहे वो फेदर्स वाले कपड़े हों या शिमर वाले कपड़े हों, ब्लिंगी कपड़े हों, ट्रेल वाले गाउन हों, सभी हेलेन जी खुद डिजाइन किया करती थी। यही नहीं, वो अपना मेकअप भी खुद किया करती थी और पेरिस और यूएसए कई सारी जगहों पर घूमने जाती थी और वहाँ से अपने लिए ये कपड़े और मेकअप खरीद के लेकर आती थी। प्रोड्यूसर्स की तो चांदी हो जाती थी, उन्हें सिर्फ एक डांसर ही नहीं बल्कि एक मेकअप आर्टिस्ट और एक ड्रेस डिजाइनर भी साथ में पैकेज में मिल जाती थी। वो सेक्सी तो थी लेकिन उनका काम काफ़ी क्लीन और डिसेंट हुआ करता था, कभी कोई वल्गैरिटी उनके किसी गाने में नहीं थी। आपको बताऊंगी कि कैसे हेलेन जी ने अपनी जिंदगी बदली और बॉलीवुड की आइटम गर्ल बन गई। शुरुआत में तो उनका प्लान क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं, तो ये जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उसके पहले आपको सुना रही हूँ जीवन साथी फिल्म से आशा जी की आवाज में अगला गाना।

सुन रहे हैं आप, मैं हूँ रुचि आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं हेलेन खान की। हेलेन ने भले ही लोगों को अपने गाने पर बहुत नचाया, लेकिन लाइफ ने इन्हें पहले बहुत नचाया। उनके पापा ने वर्ल्ड वॉर टू के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। हेलेन अपनी माँ, अपनी बहन के साथ में बर्मा में रहा करती थी, लेकिन पिता के गुजर जाने के बाद ये लोग मुंबई आ गए। उनकी माँ एज अ नर्स नौकरी किया करती थी। हेलेन स्कूल में थी उस समय, लेकिन मजबूरी के कारण उन्हें स्कूल भी छोड़ना पड़ गया था। उनकी एक फैमिली फ्रेंड कुकू ने उन्हें फिल्म शबिस्तान में एज अ कोरस डांसर नौकरी दिलवाई थी, लेकिन इसके बाद क्योंकि उनका डांसिंग इतना अच्छा था, सब लोगों ने रिकग्नाइज किया और अलिफ लैला में उन्हें एज अ सोलो डांसर फीचर किया गया। फिर हूरे अरब आई और उसी के साथ में हेलेन जी का नाम सब जगह पर हो गया था। हेलेन जी को तो विश्वास ही नहीं था कि लोग उन्हें जानते हैं, कि वो थोड़ी बड़ी बन चुकी हैं। वो कभी नहीं मानती थी कि वो सेलिब्रिटी बन गई हैं। पर फिर कुछ ऐसा हुआ हावड़ा ब्रिज की शूट के दौरान कि उन्हें यकीन हो गया कि अब वो सेलिब्रिटी बन गई हैं। क्या हुआ बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले हावड़ा ब्रिज की बात हुई है तो उसी फिल्म से गीता दत्त की आवाज में गाना मेरा नाम चिंचिंचू।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरि।
1: पिक्सी ब्रांड को अंतरराष्ट्रीय स्तर का उत्पादन,
2: उच्च स्तरीय 100% सूती बाट निर्मित, पसिना सोस्ने हलुका टिकाउ र मुलायम इनरवेयर।
1: जेन्स को लागि पिक्सी सुपर कुल भेस्ट ब्रिफ्स र पिक्सी गिलेक्स भेस्ट, लेडीज को लागि पिक्सी फेमिनेक्स क्यामिसोल र ब्लोमर।
3: पिक्सी फर द कम्फर्टेबल यू।
4: क्याप्टेन रेग्मीज फार्म हाउस,
5: हिमाली दृश्यको अवलोकन सँगै प्राकृतिक सुन्दरतामा रमाउनको लागि स्वच्छ अनि रमणीय स्थान
4: क्याप्टेन रेग्मीज फार्म हाउस,
5: पौराणिक नुवाकोट दरबार र बेलकोट गढी सँगै
4: काठमाडौँबाट मात्र 3 घण्टाको यात्रामा पुग्न सकिने,
5: आफ्नै फार्ममा उत्पादन गरी दाउरामा पकाएका अर्ग्यानिक खानाका परिकारहरू,
4: सेमिनार गोष्ठीका लागि उपयुक्त
5: स्कुल कलेजबाट एजुकेशन टुरमा जाने विद्यार्थीहरू लगायत बोटानिकल सम्बन्धी रुचि राख्नेहरूको लागि उत्कृष्ट स्थान
4: क्याप्टेन रेग्मीज फार्म हाउस, कमतानको बगैंचा, बेलकोटगढी, मदानपुर 12, देउराली।
5: सम्पर्क नम्बर
4: 9141470164,
5: 9832545054,
4: 9849528781।
6: You are listening to Weekend Classic Radio Show.
7: Weekend Classic Radio Show सुन रहे हैं आप मेरे यानी रुचि के साथ। आज हम बात कर रहे हैं तो वेरी गॉर्जियस हेलेन खान की। फेमस होना सभी को पसंद होता है। अगर मैं कहूँ कि आप कहीं निकलें और लोग आपको पहचानना शुरू कर दें तो वो एक फीलिंग ही अलग होती है, द एक्सपीरियंस ऑफ इट। हर इंसान वेट करता है इसके लिए, लेकिन हेलेन जी ये चाहती ही नहीं थी। वो अच्छी डांसर थी और वो हमेशा एक डांसर ही बन करके रहना चाहती थी, उन्हें सेलिब्रिटी बनना ही नहीं था। हेलेन जी अलिफ लैला और हूरे अरब में काम करने के बाद में भी ये नहीं मानती थी कि लोग उन्हें पहचानने लगे हैं और वो पॉपुलर हो गई हैं। एक बार हावड़ा ब्रिज की शूट के वक्त हेलेन अपनी मॉम के साथ टैक्सी से जा रही थी और ट्रैफिक सिग्नल पर लोगों ने इन्हें घेर लिया था और सभी लोग बोलने लग गए थे कि अरे हेलेन, ये हेलेन ही है ना, आप हेलेन ही हो ना। हेलेन की माँ को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने सच में सबको बताना शुरू कर दिया कि हाँ हाँ, यही हेलेन है, ये मेरी बेटी है, ये हेलेन है। हेलेन जी की माँ तो बहुत खुश हुई, लेकिन हेलेन जी को काफ़ी एम्बेरस्ड महसूस हुआ और उसके बाद से उन्होंने बुर्का पहनकर घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। हेलेन जी की जिंदगी के कुछ पन्ने आज पलट रही हूं मैं यहां पर। जैसा मैंने कहा था आपको, हजार से भी ज्यादा फिल्मों में काम करने के बावजूद एक समय ऐसा आया था जब हेलेन जी बैंकरप्ट हो गई थी। ईयर 1959 की बात है, जब एक बी ग्रेड फिल्म्स के डायरेक्टर पीएन अरोरा जी के साथ उन्होंने शादी कर ली थी। वो हेलेन जी से 27 साल बड़े थे उम्र में। पीएन अरोरा हेलेन को लेकर काफ़ी पोजेसिव हुआ करते थे, लेकिन हेलेन जी ने फिर भी अपना काम नहीं छोड़ा और अपने डांसिंग पे हमेशा अपना फोकस रखा। पर बात कुछ ऐसी हुई कि पीएन अरोरा बिना हेलेन जी को बताए उनके पैसे ले लिया करते थे, चुरा लिया करते थे। हेलेन जी 42 इयर्स की हो चुकी थी, उन्हें आइटम नंबर्स भी मिलना कुछ कम हो गए थे, और जिस तरह से उनके पति उनके पैसे खर्च किए चले जा रहे थे, उनके सारे पैसे भी खत्म हो गए थे। उसके बाद जा करके इनका ये रिश्ता टूटा। हेलेन जी ने अपनी जिंदगी को एक बार फिर से संभाला और उनकी मुलाकात हुई सलीम खान जी से। दोनों में प्यार हुआ, दोनों ने शादी कर ली। सलीम खान जी ऑलरेडी मैरिड थे 4 बच्चों के साथ, सलमान, सोहेल, अरबाज, अलवीरा। शुरुआत में सलीम खान के बच्चों को इससे एतराज जरूर था, लेकिन बाद में दे ऑल बिकेम वन बिग हैप्पी फैमिली। हेलेन जी की इसी जिंदगी को सेलिब्रेट करते हुए सुनाती हूँ आपको अगला गाना, फिल्म जूल थीप से आशा जी की आवाज में। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। ला ला ला।

आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें। संगीत पथ के साथियों, आपका रेडियो दोस्त अमीन सायानी हाजिर

0: भाई आपने भी क्या स्माइल दी है गीत की झलक सुनकर। जरा ये भी तो बताइए क्या राज है आपकी इस मधुर मुस्कान का।
1: ना ना अपनी टूथपेस्ट का नाम मत लीजिएगा।
0: मैं भी नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहनों और भाइयों टूथपेस्ट का नाम और साथ ही प्रोग्राम के शुरू का नाम 3 बार बदला मगर गीतमाला वही रही और मैं भी वही रहा। बस तो बहनों और भाइयों नाम लीजिए सिर्फ गीतमाला का और इसकी छाव में आकर सुनना शुरू कीजिए गीतमाला में हिट परेड के आने से पहले के कुछ और यादगार गीत जिनका जमाना बहनों और भाइयों उसके बाद तो हाय बीत गया।

भाई उन गीतों से हम बिछड़े तो सही, मगर घबराने की कोई बात नहीं है। फिल्मी संगीत का जो सुनहरा दौर शुरू हुआ था ना 1940 के आसपास, वो गोल्डन पीरियड जोरों में चलता रहा कम से कम 30-40 वर्षों तक। जी हाँ, और गीतवाला की इस छाव में खास तौर पर जो प्यारी प्यारी संगीत की मतवाली लड़कियां बैठी हुई हैं ना, वो अगर चाहें तो उस जमाने का कोई भी मधुर गीत वो यहां बुला सकती हैं फौरन। तो मेरी जान बुलाओ ना। हैं, क्या कहा? मोबाइल फोन साथ नहीं लाई? अरे तो क्या हुआ, जरा प्यार से अपना पोस्टमैन बना दो चंदा।

अच्छा, आप जानते हैं बहनों और भाइयों, यही वो फिल्म थी जिसमें एक बहुत ही मशहूर फिल्म स्टार जो लाहौर

0: शुरू हुई तो मैं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा उस वक्त 1 साल का था।
1: अच्छा।
0: तो हम लोग बम्बई पहुंचे 14 अगस्त 47, यानी जिसको के इंडिपेंडेंस ईव कहते हैं।
1: जी जी।
0: लेकिन बात यह कि जब सोचा था कि भाई लाहौर में थोड़ा बहुत नहाम हो गया है तो यहाँ काम तो मिल ही जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं।
1: अच्छा।
0: 8-10 महीने यहाँ धक्के खाते रहे। और आपको यकीन नहीं आएगा कि एक दफा मैं बॉम्बे टॉकीज गया था जहाँ मुझे उन्होंने कंडम कर दिया था।
1: अरे?
0: कि इसका चेहरा ठीक नहीं है, इसके फेस के ऊपर झुर्रिये हैं और ये है और वो है। वहीं से नेक्स्ट डे मुझे टेलीफोन आया कि साहब आपको बुलाया बॉम्बे टॉकीज।
1: अच्छा।
0: तो अमीन साहब आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं बाई ट्रेन मलाड जा सकूं, तो मैं सुबह पहली गाड़ी से गया था कि जहाँ चेकिंग नहीं हो।
1: अच्छा।
0: तो उन्होंने ये कहा कि भाई एक ये पिक्चर बन रही है जिद्दी जिसमें एक छोटा सा विलन का रोल है। मैंने कहा साहब ठीक है। कहेंगे भाई पैसे क्या लोगे? मैंने कहा जी आप बोलिए क्या देंगे। कहने लगे सारी पिक्चर का 500 रुपया।
2: यस बनोर भाइयों, बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये शानदार फिल्म स्टार प्राण की आवाज थी, स्क्रीन के धमाकेदार विलन, मगर जीवन में बड़े खुश मिजाज, मिलनसार और शायराना तबीयत के इंसान। खैर साहब, प्राण से मिलने के बाद अब उस जमाने के कुछ और गीतों से मिलिए। इस वॉल्यूम में भी मैंने कोशिश तो जरूर की है कि कई सिंगरों की आवाजें इसमें शामिल करूं, मगर एक लता की आवाज तो भाई कई बार आएगी ही आएगी, क्योंकि 1950s में तो उन्हीं का राज था ना फिल्म संगीत पर। बल्कि एक मजे की बात बताऊं आपको, एक बार ओपी नैयर ने मुझे बताया था कि देखिए लता की आवाज मेरे गीतों में कभी ना आने की वजह कुछ और थी, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि हालांकि आशा और गीता और शमशाद अपनी जगह पर लाजवाब हैं, मगर लता हैज ऑलवेज बीन नंबर वन। और फिर आप जानते हैं मनोहर भाइयों, ओपी नैयर ने अपनी ही फरमाइश पर अपने उस इंटरव्यू में लता का ये गीत भी बजवाया।

0: छांव में आप सबके साथ बैठकर सुनने में मुझे बड़ा मजा आ रहा है साहब, मगर उन दिनों अगर देखा जाए तो मेरे सभी मजे बंद थे। मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं अपनी गीतमाला का कैदी बन गया हूं और गीतमाला मुझे डांट कर कह रही है,
1: अबे ओ अमीन, बस बैठा रहे दफ्तर में दिन रात और गीतमाला कंपटीशन के लिए आती हुई चिट्ठियां चेक किया कर हैं। तेरे सब गुलछर्रे, सब पिकनिक पार्टियां बंद और तू जो इधर उधर भाग भाग कर क्लासिकल संगीत की महफिलें अटेंड किया करता है ना, वो भी एकदम बंद।
0: हाँ दोस्तों, मुझे सचमुच शास्त्रीय संगीत का भी बड़ा शौक था। स्कूल में 3-4 बरस मैंने पक्का गाना सीखा भी था जी, मगर जवानी की दहलीज पर कदम रखने से पहले जब मेरी आवाज फटी ना तो फिर गाने वाने के लिए कभी जुड़ी ही नहीं। तो भाई जब मेरा गाना बंद हो गया तो मैंने संगीत सुनना जोरों में शुरू कर दिया, खास तौर पर फिल्मी गीत सुनना गीतवाला के सिलेक्शन के लिए। और सुनते सुनते साहब एक बार एक बड़ा अनोखा सा ड्यूएट कानों से टकराया जिसमें, खैर चलिए पहले आपको गाना तो सुन लीजिए।

0: अच्छा साहब, इस गीत में जो जनाना आवाज थी वो नूर जहां की थी, आप तो जानते ही हैं, और नूर जहां ही वो गायिका थी जिनके स्टाइल से लता मंगेशकर बहुत प्रभावित हुई थी, ये लता जी ने खुद मुझे बताया है। मगर इस गीत के जो मेल गायक थे ना, उनकी आवाज का असर आप जानते हैं किन पर बहुत जोरदार तरीके से हुआ था? अजी खुद मोहम्मद रफी पर। मगर उसके बाद रफी तो साहब बहुत आगे बढ़ गए और छा गए संगीत की दुनिया पर, मगर वो गायक जिनका नाम था G.M. दुर्रानी, उन पर लोकप्रियता की यानी कि मकबूलियत की धूप बस कुछ साल तक पड़ती रही और फिर ढल गई। वैसे दुर्रानी साहब बोलने में भी बहुत उस्ताद थे और ऑल इंडिया रेडियो के ड्रामों में कई वर्षों तक उनकी आवाज सुनाई देती रही।
1: सिल्वर पैलेस विश्वसनीय, सुरक्षित र भरपर्दो स्वदेशी श्रम र सिपबाट निर्मित आकर्षक डिजाइन का मिसावट रहित चाँदी का एक्सक्लुसिव गहना लगायत भाँडाहरू, विवाह लगायत अन्य अवसर का लागि चाहिने चाँदी का सामानहरू को लागि सिल्वर पैलेस, न त ठगिने डर न मिसावट को चिंता, हरेक सामान मा 100% शुद्धता को ग्यारेन्टी दिने एक मात्र सिल्वर पैलेस, पसल नंबर 15 विशाल बजार न्यू रोड एवं प्युखा न्यू रोड, होलसेल तथा रिटेल सेवा।
2: हरेक सियो धागो र टाक सँग जोडिएको हुन्छ एउटा कथा, कथा परम्पराको, कथा सिप र सुन्दरताको, पुस्तौंदेखि बुनिएको पहिचानको र ती पहिचानको आकार दिने कल्पनाको।
3: विगत 50 वर्षदेखि यी कल्पनालाई यथार्थमा परिणत गर्दै सर्वप्रिय, लोकप्रिय, सबैमा मनमा बस्न सफल श्रेष्ठ टेलरिङ सेन्टर।
2: श्रेष्ठ टेलरिङ सेन्टर सिन्स 1975।
4: साउजी, मलाई एक बोरा भान्साघर लङ ग्रेन चामल दिनुहोस् न।
5: ल लिनुहोस्।
4: होइन, सेतो बोरा छ त, पहिले हरियो बोरा थियो होइन र साउजी?
5: लौ, तपाईँलाई थाहा छैन, अहिले नयाँ प्याकमा सेतो बोरामा पनि उपलब्ध छ नि, साथै पहिलेको हरियो बोरामा पनि उपलब्ध छ। दुवै बोराको चामल उही मूल्य, उही गुणस्तर र उही स्वादको हो। तपाईँले जुन भन्नुहुन्छ त्यही बोरा दिन्छु। हजुर, जयश्री फुड्सको उत्कृष्ट उत्पादन भान्साघर लङ रेन्ज चामल अब नयाँ प्याकमा पनि उपलब्ध छ, साथै प्रत्येक बोरामा आकर्षक उपहार। भान्साघर लङ रेन्ज चामल,
4: स्वाद मात्र होइन प्रेम पस्कने।

0: तैर बस्नुपर्ने दिन अब गए। घुँडाको समस्या होस् वा कम्मरको पीडा, फ्रोजन शोल्डर होस् वा साइटिका, सबैको समाधान हो अर्थो बुस्ट। गन्धपुरा, बोस्वेलिया, नीलगिरी, अदुवा, कपुर र 15 भन्दा बढी आयुर्वेदिक तत्त्वले बनेको अर्थो बुस्टले ल्याउँछ छिटो राहत, त्यो पनि बिना साइड इफेक्ट।
1: आइया भने दिन गए आराम छ अहिले, अर्थो बुस्ट रोजिकन राम्रो गरे मैले।
0: अर्थो बुस्ट, प्राकृतिक उपचार छिटो राहत, दुखाइको अन्त्य आनन्दको सुरुवात। अर्थो बुस्ट नजिकको फार्मेसी वा आयुर्वेदिक स्टोरमा उपलब्ध हुन्छ।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो,
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले
3: शुद्धता नै खोजौं। जेजे ज्वेलर्स
4: प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन, चाँदी तथा हिराका आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्सन। सुन, चाँदी तथा हिरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्।
5: जेजे ज्वेलर्स, बसन्तपुर, न्यू रोड, दमकल नजिक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क, मुनि।
6: सम्पर्क नम्बर 5320411, 9802076888।
4: जेजे ज्वेलर्स, शुद्धताको पहिचान।
7: पिक्सी ब्रान्डको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उत्पादनहरू,
8: उच्च स्तरीय 100% सुतीबाट निर्मित, पसिना सोच्ने हलुका टिकाउ र मुलायम इनरवेयर।
7: जेन्ट्सको लागि पिक्सी सुपर कुल भेस्ट ब्रिफ्स र पिक्सी गिलेक्स भेस्ट, लेडिजको लागि पिक्सी फेमिनेक्स क्यामिसोल र ब्लोमर।
9: पिक्सी फर द कम्फर्टेबल यू।
10: बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत माला की छाव में साहब, अब जरा गीतों की लोकप्रियता के एक और पहलू पर नजर डालिए। देखिए, फिल्मी गीतों को यादगार और सफल बनाने में फिल्म के डायरेक्टर का भी बड़ा हाथ होता है। जी हाँ, डायरेक्टर अगर फिल्म शानदार बनाए तो संगीत में और चार चांद लग जाते हैं। और अच्छी फिल्में देने और उनमें हमेशा अच्छा संगीत संवारने वाले एक गजब के डायरेक्टर थे हमारे राज कपूर, जिनके डायरेक्शन का दौर शुरू हुआ था किस फिल्म से? आग से। और उस पहली फिल्म के बनने के बारे में मुझे एक बड़ी मजेदार बात बताई थी खुद राज कपूर की गाती हुई आवाज के मालिक मुकेश ने।
11: अमीन भाई, राज हमेशा बड़े ऊंचे फैसले करते थे, बहुत ही ऊंचा डिसीजन लिया करते थे और उस पर अमल किया करते थे।
12: बहुत खूब। अच्छा, ये बताइए मुकेश भाई कि आग कैसे शुरू हुई?
11: अमीन भाई, एक दिन हम रंजीत स्टूडियो में बैठे थे
12: जी,
11: हजरत के पास एक टूटी फूटी गाड़ी हुआ करती थी उन दिनों में, तो उसमें बिठाया हमें और ले गए बहुत दूर जगह। वहां जाके हमें फैसला सुनाया कि भाई हम फिल्म आग बनाना चाहते हैं, तो कुछ सीन भी सुनाए। सीन तो पसंद आए ही थे, मगर मुझे जो ज्यादा बात पसंद आई वो थी कि जिस जोश के संग वो बनाना चाहते थे आग को।
12: अच्छा अच्छा,
11: जी हाँ, वो जोश मुझे बहुत पसंद आया।
12: लेकिन मुकेश भाई, सुना है आग बनाते हुए तकलीफें काफी आई थी।
11: तकलीफें? अमीन भाई, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। पैसे की तकलीफें, डेटों की तकलीफें, यानी फिल्म बनाने में जो जो तकलीफें आ सकती हैं एक प्रोड्यूसर को, उसकी इंतहा थी राज कपूर के साथ।
12: ओहो।
11: और जब फिल्म बन गई तो कोई खरीदार नहीं।
12: अरे,
11: खरीदार आए तो हमारी मजाक उड़ाया करें। यानी यहां तक एक साहब ने तो फरमाया कि राज साहब, अगर आग आपने बनाई है तो थिएटर भी आप अपना ही बना लीजिए, ताकि आग लगे तो आप ही के थिएटर में लगे।

0: मनशान्ति आराधना र उपहारका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी।
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास।
2: बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में। तो भाई आग तो सचमुच बुरी तरह हो गई फेल, मगर आग के बाद जो बरसात आई ना, तो आरके का बैनर फिल्म ब फिल्म बस ऊंचा ही ऊंचा होता चला गया। लेकिन बहनों भाइयों, अफसोस के आरके की उस जोरदार टीम में से अब तो करीब करीब सभी नहीं रहे इस दुनिया में। न वो हीरोइन, न दो संगीतकारों और गीतकारों की जोड़ियां, न खुद राज, न राज की गाती हुई आवाज। और उन सब के जाने से पहले भी और कुछ कुछ बाद में भी जरा याद कीजिए कि संगीत की दुनिया के कैसे कैसे और महान लोग भी एक एक करके चले गए।

अच्छा साहब, अब आप सुनने वाले हैं एक छोटी सी झलक एक ऐसे गीत की जो ज्यादा नहीं चला था, मगर उसे स्क्रीन पर उस जमाने की जिस जरा नई सी हीरोइन ने गाया था, वही हीरोइन आपसे मिलने वाली है इस झलक के बोलने के बाद।

0: बनोरा यू याद है आपको ये गीत स्क्रीन पर किसने गाया था है? अरे आपको तो शायद फिल्म का नाम भी याद नहीं होगा, खैर वो भी वही फिल्म हीरोइन आपको बताएंगी, मगर पहले वो कुछ कहेंगी उस फिल्म के हीरो दिलीप कुमार के बारे में। सुनिए,
1: दिलीप साहब तो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं और खुदा करे उनकी उम्र दराज हो और बहुत काम करें और हम लोग देखते रहें और सीखते रहें। सेट पर भी वो जब आया करते थे तो हमेशा कहते थे श्यामा ऐसे करो ऐसे डायलॉग बोलो, तो मैं कहती थी दिलीप साहब ये तो फिर ऐसे लगेगा कि दिलीप कुमार बोल रहा है।
0: अच्छा अब ये भी तो बताइए श्यामा जी कि ये किस फिल्म का जिक्र था जिसमें आप और दिलीप कुमार साथ थे?
1: मधुबाला, जिसमें हीरोइन थी तराना।
0: हाँ तराना, जो उस जमाने की फिल्म थी बहनों और भाइयों, जब दिलीप कुमार और मधुबाला की जोड़ी बहुत जोरों में चल रही थी और सुना है दोनों उन दिनों इतने उलझे हुए थे एक दूसरे में कि लगता था जैसे उनके रोमांस के शोले स्क्रीन से निकलकर जिंदगी में भी अपनी तपन फैला

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में। अच्छा दोस्तों, मैंने शायद मैं आपको बताया था कि मेरे बड़े भाई हमीद सायानी साहब का कितना जबरदस्त हाथ था मेरी ब्रॉडकास्टिंग को संवारने और निखारने में। एक बात उन्होंने खास बताई थी मुझे रेडियो के गुण के बारे में। उन्होंने बताया था रेडियो के बारे में ये कि रेडियो सिर्फ सुनने की चीज़ नहीं है, देखने की चीज भी है, क्योंकि हम जो बोलते हैं ना और जो गीत बजाते हैं रेडियो पर, वो सुनने वालों के मन की आंखों में उतर जाते हैं और सुनने वाले खुद उन बातों और गीतों से तस्वीरें सी बना लेते हैं अपने दिल में, और उन हिलती डोलती तस्वीरों में वो अपनी पसंद के रंग भी भर दिया करते हैं। जी हाँ, बल्कि बहनों भाइयों, आगे चलकर तो मुझे यूं लगा कि शायद हम रेडियो के जरिए सुनने वालों तक शबनम का छिड़काव, शूलों की गर्मी, फूलों की खुशबू, गालों की नरमी, सब कुछ पहुंचा सकते हैं। बल्कि हम खुद भी पहुंच जाते हैं सुनने वालों के घरों में और उनके पास बैठकर मजेदार गपशप और प्यार की बातें भी कर लेते हैं, जैसे इस समय भी तो कर रहे हैं। नहीं,

0: करो जी।
1: अच्छा बहनों और भाइयों, गीत माला की छाओ में सन 1953 तक के कुछ चुने हुए मजेदार सुरीले गीतों का मजा लेते हुए हम कभी कभी कुछ हसीन फिल्म स्टारों की प्रेम कहानियों में भी ताक झाक कर लिया करते हैं, हैं? एक और असली प्रेम कहानी जिसकी उन दिनों बड़ी हवा चली थी साहब, उसकी हीरोइन थी सुरैया और हीरो थे देव आनंद। इन दोनों की जब पहली मुलाकात हुई थी ना, तब क्या क्या हुआ था ये आप खुद सुरैया की आवाज में सुनिए।
2: अमीन साहब, सुरैया के सितारे काफी चमक चुके थे जब फिल्म विद्या साइन हुई
3: जी।
2: एक हफ्ते का शूटिंग भी शुरू हो गया, मगर हीरो का अभी कोई फैसला नहीं हुआ था। खैर, मैं काम करती गई। शूटिंग करते हुए मेरी निगाहें सेट के एक कोने की तरफ उठ जाती थी।
3: क्या था उस कोने में सुरैया जी?
2: एक नौजवान का बुत कुर्सी पर बैठा हुआ पथराई हुई नजरों से मुझे घूरता हुआ। चौथे पांचवें दिन जब मुझे ऐसा महसूस हुआ अमीन साहब, जैसे उसकी पथराई हुई नजरें मेरे रोम रोम को छू लेने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने प्रोड्यूसर को बुलवाया और कहा, वो जाते शरीफ जो उस कोने में धरना दिए बैठे हैं, उन्हें उठवा दीजिए तो मैं काम कर पाऊंगी। वो सीधे उसके पास गए और उन्हें बाहर भिजवाने की बजाय उल्टे मेरे पास ले आए।
3: अरे अरे, आपके पास ले आए?
2: जी, मैं बहुत ही सटपटाई। प्रोड्यूसर साहब मुस्कुराकर फरमाने लगी, इनसे मिलिए, ये हैं हमारे नए हीरो देवानंद।
3: अच्छा अच्छा, ये सेट का कोना पकड़कर देवानंद ही बैठे रहते थे?
2: जी हाँ, देवानंद कहने लगे, साथ काम करने से पहले एक नए आदमी को इतनी बड़ी हीरोइन को अच्छी तरह देख लेना चाहिए, गुस्ताखी माफ।
1: और भाई फिर तो ये गुस्ताखी माफ प्यार में बदली, और वो प्यार कई घरेलू रुकावटों के बावजूद बढ़ता ही गया, यहाँ तक के

0: अच्छा, मैंने जब सुरैया को इंटरव्यू किया था ना, तो उनसे ये भी पूछा था कि सुरैया जी, सुना है कि देवानंद साहब इतने सीरियस थे आपसे शादी करने के लिए कि उन्होंने शादी के प्रस्ताव के रूप में एक खूबसूरत अंगूठी भी भेजी थी आपको, तो फिर वो बात शादी तक क्यों नहीं पहुंची? तो इस बात पर सुरैया कुछ इठलाई, कुछ शर्माई और फिर कहा कुछ नहीं, बस हंस दी।
1: क्या? ओफो।
0: ओके ओके बानोर भाइयों, अब हसीनों के हंसी का नशा छोड़िए और नजर डालिए 1953 में मुझ पर पड़ी हुई, बल्कि रेडियो सिलोन की इंडियन एजेंसी के सारे दफ्तर पर पड़ी हुई मुसीबत पर। साल के आखिर में गीतमाला की प्रतियोगिता यानी कंपटीशन के लिए हर हफ्ते आने लगे थे 60,000 से भी ज्यादा खत। इतनी सारी एंट्रीज की चेकिंग में सारे दफ्तर वालों की जा रही थी जान, क्योंकि दफ्तर के टेबलों पर, कुर्सियों पर और कमरों के कोने कोने में बस चिट्ठियों के ढेर लगे थे। के फिर शुक्र है कि दफ्तर वालों ने भी और हमारे स्पॉन्सर्स ने भी ये तय किया कि भाई अब बंद करो गीतमाला का कंपटीशन और गीतमाला को बना दो पॉपुलैरिटी की हिट परेड, यानी जनता की लोकप्रियता की, मकबूलियत की हफ्तावार यानी कि साप्ताहिक संगीत सीढ़ी। संगीत सीढ़ी का मतलब संगीत प्रेमियों का प्यार पाकर गीतों का उभरना, चोटी तक पहुंचना, फिर गिरना और गायब हो जाना। जब ये तरीका मुझे पहले बताया गया ना, तो मेरी समझ में तो आया ही नहीं, बल्कि मुझे वो बड़ा अजीब और बकवास लगा और मैंने हमीद भाई से कहा भी कि नहीं नहीं मेरी गीतमाला का रूप मत बिगाड़िए ना प्लीज, सारे एशिया के लोग इसे दिल दे चुके हैं। मगर हमीद भाई ने समझाया कि भाई ट्राई करके तो देखो कि कैसा मजा आता है हिट परेड में हैं? और बहनों भाइयों, मुझे फिर कुछ यूं भी लगा कि मेरी गीतमाला भी मुझे अपने प्यारे प्यारे नैनों से देखकर मुस्कुरा कर कह रही है कि अरे बुद्धू, जरा सोच तो कि हिट परेड की संगीत सीढ़ी अगर आएगी तो 60,000 चिट्ठियां तो नहीं लदेंगी तेरे सर पर और तेरा काम कितना आसान हो जाएगा। तब जाकर बहनों भाइयों मुझे जरा होश आया और मैंने गीतमाला को कुछ इस तरह से थैंक यू।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: पिक्सी ब्रांड को अंतरराष्ट्रीय स्तर का उत्पादन,
2: उच्च स्तरीय 100% सूती बाट निर्मित, पसिना सोच्ने हलुका टिकाऊ र मुलायम इनरवेयर।
1: जेन्ट्स को लागि पिक्सी सुपर कुल भेस्ट ब्रिफ्स र पिक्सी गिलेक्स भेस्ट, लेडीज को लागि पिक्सी फेमिनेक्स क्यामिसोल र ब्लोमर।
3: पिक्सी फर द कम्फर्टेबल यू।
4: अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: वेलकम टू श्रेष्ठ टेलरिंग
2: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
3: वो मलाई फ्रॉक
4: मलाई पनी सूट
5: वो
6: अनि मलाई

0: આવેલ સૂચ્ય પાટી
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

मेरे भाई तू मुझसे कुछ कहना चाहता है? कह देना, ये अधूरी बात मुझे समझ नहीं आती। कोई तो बड़ी बात है भाई, अपने छोटे भाई से क्यों छुपाता है?

आहा, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा। और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें, कैसे कैसे सुहाने दिनों, लाजवाब गीतों और कैसे कैसे प्यारे लोगों की याद दिलाती हैं गीतमाला की वो सालाना पायदाने और गीतमाला की छांव। उन दिनों की कितनी जवानियां आज या तो बुढ़ापे में ढल चुकी हैं या हमेशा के लिए हमसे दूर जा चुकी हैं।

फिर हम आपकी कसम का ये लाजवाब गीत भी देखी बहनों भाइयों, छांव में रह गया था उस साल, और उसी छांव से मैं आपके लिए ले आया हूं गीत उस अनोखी फिल्म का जो मेरी जिंदगी में भी एक खास मकाम रखती है, क्योंकि सावन कुमार टक की उस फिल्म हवस के क्रेडिट टाइटल्स में मेरा भी नाम आया था। जी हां, डायलॉग अमीन सायानी। मगर सच्ची बात तो यह है बहनों भाइयों कि मैंने उस फिल्म के सिर्फ दो या तीन सीन्स के डायलॉग ही लिखे, और फिर फिल्म की कहानी ने मुझे इतना नर्वस कर दिया कि मैं बिल्कुल बौखला गया। जी हाँ, मेरी हालत पर फिल्म की हीरोइन बिंदु भी खूब हंसी थी। बात यह थी बहनों भाइयों कि हवस की जो कहानी थी ना, वो एक पागलपन की हद तक सेक्सी लड़की की कहानी थी, और मेरे जैसा सीधा साधा भोला भाला इंसान उस गर्मा गर्म कहानी के संवादों को हैंडल कर ही नहीं पाया। शुक्र है प्रोड्यूसर डायरेक्टर सावन कुमार को मुझ पर तरस आ गया, उन्होंने मेरा नाम तो क्रेडिट्स में बरकरार रखा, एक छोटा सा चेक भी मुझे भेजा, लेकिन फिर डायलॉग्स का जिम्मा खुद ही ले लिया, और साहब बड़े अच्छे संवाद लिखे उन्होंने, जिनमें से एक जुमला मुझे अब तक याद है, और वो ये कि एक दिमाग का डॉक्टर उस लड़की की हालत सुधारने के लिए उससे कहता है, मैडम आपको सेक्स की नहीं स्नेह की जरूरत है। तो भाई उसी का सेक्सी हवस से भरपूर गीत मैं ले आया हूं आपके लिए, आपके दिल के दरवाजे पर।

दोस्तों, हवस के गीत भी सावन कुमार साहब ही ने लिखे थे और संगीत जाहिर है उनकी सुरीली बीवी उषा खन्ना का था। और छाओं से चुना हुआ आज का अगला गीत है उस फिल्म का जिसमें आनंद के बाद ऋषिकेश मुखर्जी ही की डायरेक्शन में दूसरी बार टक्कर हुई राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की, यानी नमक हराम। मगर ये गीत टक्कर का नहीं था, मिलन का था, दो दोस्त।

अच्छा दोस्तों, अब हमें जरा स्पीड बढ़ाकर तय करना होगा 1974 के हिट गीतों का सफर, क्योंकि 74 और 75 के लिए गीत माला की छाव में कि दो दो नहीं बल्कि सिर्फ डेढ़ डेढ़ वॉल्यूम्स ही हैं ना। तो लीजिए ये आई झलकें एक के बाद एक सात सालाना पायदानों की। नंबर 25 फिल्म मनचली।

मीठी खिचड़ी किन दो गजब के कलाकारों ने पकाई थी, याद है आपको? जी हाँ, संजीव कुमार और लीना चंदावरकर ने। और यही जोड़ी उस प्यारी सी फिल्म के टाइटल गीत में पायदान नंबर 24 पर भी थी।

0: आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में।
1: अच्छा अब आओ 1974 की पायदान नंबर 23 पर और बजाओ फिल्म ज्वार भाटा के प्यार का बिगुल।

जरा ये देखिए कि 1974 की पायदान नंबर 22 पर फिल्म बदला के गीत में किसके आने की मच गई थी धूम।

0: जन्माष्टमी के त्योहार की खुशी में अपने सैकड़ों यारों के साथ हंडी तक पहुंचने की धुन में झूमते नाचते गाते चले आ रहे थे बदला के हीरो शत्रुघ्न सिन्हा। वैसे बहनो भाइयों, शोर मचाना, हंगामा करना और लोगों की टांग खिंचाई करना, ये सब शत्रुघ्न सिन्हा की पुरानी आदतें थीं कॉलेज के जमाने से। जी हाँ, उन्होंने खुद मुझे बताया था।
1: अमीन साहब, मैं कॉलेज में बहुत ही ज्यादा शरारत किया करता था, तो मैं हर हफ्ते करीब 25 रुपए फाइन कॉलेज के प्रिंसिपल को दे दिया करता था।
2: अच्छा अच्छा।
1: हमारे साइंस डिपार्टमेंट में कुल 600 लड़के थे। मैंने सबको बुलाया और कहा कि जब भी मुझे फाइन होगा तुम सबको 1-1 रुपया देना पड़ेगा।
2: अच्छा।
1: लड़कों ने कहा उससे क्या होगा। मैंने कहा बेटे देखते जाओ। अब मैं मौका ढूंढने लगा कि शरारत करते वक्त पकड़ा जाऊं और मुझे जुर्माना भरना पड़े। जैसे ही नोटिस आती मैं सबसे 1-1 रुपया ले लेता।
2: अच्छा।
1: जमा होते थे करीब 550-600 रुपए, उसमें से 25 रुपए जुर्माने के भर देता और बाकी के 225 रुपए से मजे उड़ाते।
0: अच्छा बहनों भाइयों, उन दिनों कई बार ऐसा होता था कि अगर कोई गीत 1 साल में कम बजता तो उसके अगले साल सरताज बनकर रिटायर हो जाने से पहले के मार्क्स भी उस गीत में जोड़ दिए जाते थे। इसीलिए 1973 का गीत नंबर 24 1974 में फिर बजा नंबर 21 पर। फिल्म थी झील के उस पार।

अच्छा भाई, अब पायदान नंबर 20 की यादों की बारात में जरा झांक कर देखिए कि हाय हाय, किसके कमरे में कौन रह रहा है।

और साहब छाव में लौटने से पहले 1974 के गीत नंबर 19 को भी जरा याद कर दीजिए। बड़ी एंटरटेनिंग फिल्म चोर मचाए शोर का गीत था वो, जिसमें शशि कपूर और मुमताज की मोहब्बत जैसे तोता मैना की कहानी बन गई थी।

बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में। अच्छा साहब, गीत माला की छाव में से अब तीन जरा अनोखे गीत मुझसे कह रहे हैं कि अमीन भाई, 1974 की लोकप्रियता की धूम ने तो हमें ठुकरा दिया, मगर आप तो हमें छाव में याद कीजिए। तो हाँ हाँ भाई, यही तो मेरा काम है यहाँ। चलिए तीन गीत छाव के सुन डालिए एक के बाद एक। पहले 1974 की उस फिल्म से जिसका नाम ठोकर आप शायद भूल गए होंगे, और बड़े ही गुणी संगीतकार श्याम जी घनश्याम जी भी आपको याद नहीं होंगे। तो दोस्तों, ऐसे भूले बिसरे मोती भी मैं कभी कभी चुन कर लाता हूं आपके लिए गीतमाला की छांव में।

बहरो रहियो उसी साल एक और छोटी सी फिल्म परिणय में बेमिसाल संगीतकार जयदेव का संगीत भी गूंजा था। राग रागिनी के रसियाओं को खास तौर पर पसंद आएगा ये गाना। इसमें मन्ना डे के साथ आवाज थी बोल रे पपिया वाली वाणी जयराम की।

ओके दोस्तों, अब जरा मुंह का मजा बदलने के लिए एक मनचले नेपाली दरबान से भी मिल डालिए गीतमाला की छाव में। एक गुपचुप गुपचुप डेवलप होने वाले रोमांस की चुगली खाई थी इस दरबार ने। फिल्म का नाम था कसौटी। बहुत पॉपुलर हुआ था ये गीत भाई, लेकिन सालाना संगीत श्रेणी तक नहीं पा

के साथ हो सकते हैं, जो करता है पाता है। अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा।

0: बोलेगा तो
1: चलो, तो हम बोलेगा कि बस आज का छांव के गीतों का कोटा खत्म। अब बैठ जाइए यादों के घोड़े पर और दिल की चाल से कीजिए 1974 की पायदान नंबर 18 से नंबर 12 तक की चढ़ान। नंबर 18 पर उस साल था फिल्म नमक हराम का ये नगमा।

बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में। दोस्तों, आजकल जब ये वॉल्यूम नंबर 38 रिकॉर्ड हो रहा है ना, यानी जून सन 2012 में, नमक हराम जैसी कई शानदार फिल्मों के सुपरस्टार राजेश खन्ना की बिगड़ती हुई सेहत की खबरों ने उनके सभी फैंस को परेशान कर रखा है। खबर यह भी है कि उनकी बीवी डिंपल कापड़िया, जो कई वर्षों तक उनसे अलग हो गई थी, उनकी हालत से दुखी होकर फिर उनके पास आ गई हैं उनकी देखभाल करने के लिए। आइए हम सब राजेश जी यानी हमारे प्यारे काका जी की तंदुरुस्ती की दुआएं मांगते हुए अब सुने उनकी 1974 की एक और हिट फिल्म का गीत, जो उस साल नंबर 17 पर बजा। फिल्म थी आपकी।

0: भाई बड़ी बेचैनी से करवटें बदलते बदलते मुझे अब आपकी कसम ही नहीं बल्कि नमक हराम के भी गीतकार संगीतकार याद आ रहे हैं। गीतकार आनंद बख्शी, जिन्होंने सुनी मुझे कई बरस पहले क्या बताया था अपने सुरीले साथी पंचम यानी आरडी बर्मन के बारे में।
1: आरडी बर्मन मेरा बड़ा अजीज संगीतकार है
2: जी।
1: वैसे बेसिकली वो अपने म्यूजिक में काफी संजीदा रहता है।
2: अच्छा।
1: अदरवाइज वो काफी हद तक एक कॉमेडियन किस्म का इंसान है।
2: अच्छा।
1: कभी कभी वो बड़ी बड़ी खूबसूरत बातें बताता है जिससे हम घंटों हंसते रहते हैं।
2: अच्छा।
1: और आरडी बर्मन को खाने का बड़ा शौक है। खाने का भी और कभी कभी खिलाने का भी।
2: अच्छा चाहिए।
1: वो खुद भी कुछ दो चार चीजें अच्छी बना लेता है।
2: अच्छा
1: जी हाँ।
0: अच्छा दोस्तों, 1974 की गीतमाला सालाना संगीत श्रेणी पर हम जब एक कदम और बढ़ाते हैं तो पता चलता है कि अरे पायदान नंबर 16 पर तो वही गीत था जो इससे पहले यानी 1973 की संगीत श्रेणी पर भी बजा था नंबर 26 पर। 2 वर्षों में बढ़ जाने वाला ये गीत फिल्म अभिमान का था।
3: चैन नहीं बाहर, चैन नहीं घर में, मन मेरा धरती पर और कभी

1974 का एक और बड़ा प्यारा गीत नंबर 14 पर था। इसे सुनकर आपके दिल में उभर आएंगी देवानंद और जीनत अमान की फिल्म हीरा पन्ना की यादें।

और अब आने वाला है 1974 का एक और बहुत ही लाजवाब गीत, जो उस साल की पायदान नंबर 13 पर पहुंच गया था और जो मेरे फेवरेट गीतों में से भी एक है। इसलिए बहनों भाइयों, मैं इसका मुखड़ा ही नहीं अंतरा भी बजाऊंगा आपके लिए। जरा सुनिए कि कितनी नजाकत थी जानसार अख्तर के शब्दों में और कैसी दिल में बस जाने वाली धुन बनाई थी जयदेव ने। फिल्म थी प्रेम पर्वत, जिसके बड़े काबिल डायरेक्टर और राइटर थे वेद।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरी।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: श्रेष्ठ टेलरिंग
2: चीर परिचे यहाँ श्रेष्ठ।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

जय श्री राधे। साथियों, ये कन्हैया जी के बचपन का एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, जिसमें हमेशा की तरह कन्हैया अपनी आदत के अनुसार एक बड़ी अनोखी जिद पकड़ लेते हैं। होता कुछ यूं है कि उनके एक सखा जो उनसे 10 साल बड़े होते हैं, उनका विवाह तय हो जाता है। अब बड़ी धूमधाम से शादी हो रही होती है, जिसे देखकर 7 वर्षीय भगवान श्री श्याम सुंदर अपनी मैया से अपने विवाह की जिद कर बैठते हैं और कहने लगते हैं,

बालकृष्ण के मुख से विवाह जिद पहले तो मैया को बड़ा ही आनंद देता है। वो बहुत देर तक अपने लला को देखती रहती है, मुस्कुराती रहती है, परंतु कुछ देर बाद जब उन्हें लगता है कि मेरा लला तो गंभीर हो गया है, तो मैया उसे समझाते हुए कहती है,

मित्रों, माँ की बात सुनकर भगवान बालकृष्ण जी इस सोच में पड़ जाते हैं कि वो तो सोच रहे थे कि हमेशा की तरह इस बार भी मैया को तुरंत मना लेंगे, मगर मैया जी तो मानने को तैयारी नहीं हो रही हैं। वो कहती हैं कि मैं अभी बहुत छोटा हूँ। बस यही सोचते हुए भगवान कृष्ण पैतरा बदलकर मैया को समझाने लगते हैं।

अपने नन्हे से लाल गोपाल की बात सुनकर मैया मन ही मन बड़ी प्रसन्न होती है। वो सोचती है कि आज मेरे लला को क्या हो गया, ऐसी जिद क्यों पकड़ कर बैठ गया है, और ये भी सोचती है कि लला कह भी नहीं रहा कि बड़ी बड़ी गौएं चरा कर लाता है, अब इसे क्या जवाब दो। इधर माँ के मन की बात जानकर अंतर्यामी भगवान भी बड़े प्रसन्न हैं और सोच रहे हैं कि आज तो मैया दुविधा में फंस गई। लेकिन तब मैया लाला मदन गोपाल की तरफ देखती है और कहती

साथियों, मैया की इतनी सी बात जब नंदलाला ने सुनी तो वो समझ गए कि मैया के आगे अब दाल गलने वाली नहीं है। सोचने लगे कि अब करूं तो क्या करूं, मामला अपनी जगह पर जम जाए। उधर अपने सुकुमार की दशा देखकर माता यशोदा मन ही मन बड़ी प्रसन्न हो रही थी, मगर ये भी सोच रही थी ये नटखट नंद गोपाल मोर मुकुटधारी मेरा लाडला इतना शीघ्र मानने वाला तो नहीं है कि तभी भगवान कृष्ण पैतरा बदल कर बोलते हैं।

मेरे प्रिय, लाला की ऐसी मजेदार बातें सुनकर मैया यशोदा और अधिक प्रसन्न हो जाती, किंतु अपने छोटे से कान्हा की हाजिर जवाबी से उन्हें लग रहा था कि उनका लाला बड़े होकर उनका नाम रोशन करेगा ही। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो लाला को कैसे समझाएं कि वो अभी विवाह के योग्य नहीं है। उधर भगवान को भी लग रहा था कि अब माँ बहुत ज्यादा परेशान हो गई है, अब इसे और परेशान नहीं करना है। वो माँ से क्षमा मांगने ही वाले थे कि माता जी कहते हैं।

अपने लाला का तर्क सुनकर मैया सोचने लगती है कि हाँ, ये बात तो पूरी नगरी जानती है कि मेरे लाला ने उस अत्याचारी दुष्ट कालिया का सर्वनाश कर दिया, जिसने अपनी दहशत फैला रखी थी और वो जिसको पकड़ लेता था जिंदा ही खा जाता था। लेकिन फिर भी अभी मेरा लाला तो बहुत छोटा है ना, उसका विवाह कैसे करूं? और वो लाला को देखकर कहती है,

सभी को राधे राधे मित्रों। एक बार की बात है, राधा रानी जी अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी, तभी अपने प्रीतम की बात करते हुए उनकी सुंदरता का वर्णन कर रही थी। बातों बातों में कुछ देर बाद राधा रानी के प्रीतम सांवरिया श्याम सलोने की चर्चा होने लगती है, तो सभी सहेलियां श्याम काले को लेकर राधा जी को चढ़ाती हैं और आनंद लेने लगती हैं। तो प्रस्तुत है राधा जी और उनकी सहेलियों के बीच की नोकझोंक।

सभी सहेलियां मिलकर राधा जी को चिढ़ा रही थी कि वहां से गुजरते हुए नटखट नंद गोपाल कन्हैया लाल भी इस नोक झोंक को सुनकर एक पेड़ की ओट लेकर खड़े हो जाते हैं और प्रतीक्षा करने लगते हैं कि देखें राधा जी अपनी सहेलियों को क्या जवाब देती।

राधा जी का उत्तर सुनकर सभी सहेलियां एक पल के लिए खामोश हो जाती और अपना अपना सर हिलाकर राधा के सुर में सुर मिलाने लगती। पेड़ की ओट में छुपे मुरलीधर मुरारी भी राधा के जवाब से मुस्कुराने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि देखें आगे क्या होता है। तभी एक सहेली के मन में शंका उभरती है और वो अपनी शंका प्रकट करने के लिए कहने लगती है,

अपनी सखियों की बात सुनकर राधा जरा भी विचलित नहीं हुई, बल्कि बारी बारी सभी सखियों को देखकर हल्के से मुस्कुराने लगी। राधा जी को मुस्कुराता हुआ देखकर पेड़ की ओट में छुपे भगवान नंदलाल जी के मुखमंडल के भाव ही बदल गए। राधा जी के जवाब की उत्सुकता मन में बढ़ गई और वो सोचने लगे, देखें नवल किशोरी जी आगे क्या कहती है। इधर राधा जी अपनी सहेलियों को

साथियों, राधिका रानी का सुंदर और अतुलनीय जवाब सुनकर उस सहेली का चेहरा काला नहीं बल्कि बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। सभी सहेलियां भी राधा जी के जवाब से सहमत हो जाती हैं। और उधर पेड़ की आड़ में भगवान कृष्ण भी मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। मगर उन सहेलियों में एक बहुत गोरी चिट्टी सहेली भी है जिसे अपने गोरेपन पर बड़ा घमंड है। वो राधिका प्यारी से कहने लगती है,

अपनी सहेली की बात सुनकर राधा को थोड़ा सा बुरा तो लगता है, मगर वो अपने आप को संभालते हुए मुस्कुराने लगती है। पेड़ के पीछे छुपे नंद गोपाल अपनी प्रिया राधिके की मनोदशा समझ जाते हैं, मगर पेड़ के पीछे छुपे रहकर श्री राधा के जवाब की प्रतीक्षा करने लगते हैं। इधर राधा रानी जी अपनी गोरी सहेली की शंका दूर करने के लिए कहने लगती है,